जोजलपाथौ नेपाल सम्भव छिन्छसौ पि खुद अनालागा द्वितीय थो रेडियो नेपाल ख अनिनादिसा जिरुबी पाके नेपाल भाषा या समाचार। अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम वागले सरकार सामाजिक न्यायता केन्द्रके तया वैगो आर्थिक दया बजेट हयागु धया दिगुदु प्रतिनिधि सभा वैगो आर्थिक दया 2083-84 व्याय बजेट दथिया सलस संसदेस होङ्गु न्यासिस अर्थमन्त्री डाक्टर वागले समता औ सामाजिक न्यायता बजेट केन्द्र बिन्दुके तया दिएकाको कना दिल संविधान मर्म कथा बजेट वोगु संविधानीय मर्म अख बजेट वोगु धैगु प्रतिपक्षीय दोपहिया त लिसबिया दिसे बजेट आर्थिक वृद्धि व समानता या सन्तुलन यता थ्याबिगु धया दिल अर्थमन्त्री डाक्टर वाग्ने सुशासन या एजेन्डा जोना सरकार नियोजनाको कना दिसे जनता अनुमोदन यागु थपिस हाथ्या जागु पला याता धोका बि मफैगु धया दिल अर्थमन्त्री डाक्टर वागले थपी दथी छगो कार्य दर हिलाबुला यागु दोपस लिसबिया दिसे निगु अर्ब ढेवा मखु नित्यका ढेवा तक्क न थप्न शङ्का गुजुस थप्न पस राजीनामा बित तयार जुयागु थका लिसबिया दिगु दुसा थुया न्ह बजेट दथिया सलस सत्तापक्षीय संसदीय सम बजेट आर्थिक पुनरुत्थान कल्याणकारी राज्य सामाजिक न्याय व समावेशी विकास पला तया वोगुली प्याछी जुगु थया दिल सार्वजनिक खर्च तब्याकेगु लजगा बुलाङकेको आयकर छुट्या सीमा तब्याकेगु सामाजिक सुरक्षा ज्याच तब्याकेगु स्वास्थ्य शिक्षा लगानी उपकेगु पूर्वाधार विकास तथङ्गु टेवा विनियोजन विकास लपु कोछिगु संसदे सन्ध्या दिगुदु संसदे सन्तङ्गु आज जोङ्गु बजेट कार्यान्वयन यागु विशेष सरकार ध्यान कोसला दिगु खसा प्रतिपक्षी दल संसदे स बुद्धिजीवी व मध्यम वर्ग या तब्याकेगु नामे वोगु बजेट नेपाल संविधान या प्रस्तावना निर्दिष्ट यागु समाजवाद या पला सिबेन व्याग्न चुगु धया दिला संसद त्यस आयागु आवश्यकता कथा लजका भुलङ्की मागु बजेट वे मफुगु चिधङ्गु किसान भूमिहीन कृषि श्रमिक त दति बजेट उदासीन चुगु उत्पादकत्व व कृषि उत्पादन ने आत्मनिर्भरता ग्वाली ठेङ्की गुयाना वे मफुगु दका कुङ्खिना दिगु ख संसदीय स्वास्थ्य शिक्षा यता मौलिक हक कथा कागु अवस्था लोगी त्यता कर छगु बजेट वोगु वास उद्योग सङ्कटे लागु याना कर छगु वास या स्वदेशी उद्योग कमजोर देखेको याना बजेट हगु धया दिल परदेश व स्थानीय तया वित्तीय स्वायत्तता सेलाकेगु स्पष्ट योजना बजेटे वे मफुगुन संसद त्यसको उङ्किना दिगु दुसा प्रतिनिधि सभा या बैठक नेपाल राष्ट्र बैङ्क स्वकगु संशोधन विधेयक 2083 विचार यामा दैगु प्रस्ताव स्वीकृति आगुदु बैठकै अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम वागले न्यावोगु विधेयक दति सामान्य सहलिपा प्रस्ताव सर्वसम्मति स्वीकृति नदिगु ख विधेयक दतीय सहलया झोले बोटी कापी संसद त्यसमा राष्ट्र बैङ्क या नियामक भूमिका या त अझ बल्ला के त डिजिटल भुक्तानी साइबर जोखिम नापाया विषय विधेयक स्पष्ट व्यवस्था या मागु धया दिगु दुस वैगो आर्थिक दया बजेट दतीय सहलस लिस लिपा अर्थमन्त्री डाक्टर वाग्ले विनियोजन विधेयक 2083 हो नेपाल राष्ट्र ऋण ढुनेको विधेयक 2083 या त बैठकै प्रतिपक्षी दलीय सांसद प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेपाल भारत सीमा विशेष बिहादिगु नोचुया विषयता कया परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल बिहादिगु स्पष्टीकरण थपी सन्तुष्ट मजुयागु ध्यादिगु ख प्रतिपक्षी दलीय सांसद राष्ट्र राष्ट्रियतया सांसद मुक्क दे छगु यथासे दने मागुली बिहादिसे प्रधानमन्त्री शाह सदने वया लिसबी मागु व नोचु भिङ्के मागु धया दिगु दुस बैठकै नेकपा एमाले प्रमुख सचेतक एन बहादुर महरण राष्ट्रियता राष्ट्रिय सुरक्षा राष्ट्रिय हित परराष्ट्र नीति विशेष संसत्ता पक्ष अभिपक्ष जी मजुगु मुकन्ते छगु यथासे दने मागु धासे निगु भोके भोथया चोङ्गु थे खने दैगु विषय गम्भीर जुगु कना दिल अथेना नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी मू सचेतक युवराज दुलाल प्रधानमन्त्री शाह संसदीय बी मागु नोचुया त थप्न हे स्पष्टीकरण बी मागु थपिनेगु माग
दया हे चुङ्गु थ्यादिल वेक्ला इबी गाडी कर छलि व सामान हे महसे भन्सार पास यागु विषय पिने वोगुली सामान मध्ये कहे भन्सार पास गथ्याना जुल थेगु विषय संसदीय छानबिन जुई मागु इना पेना दिल अध्ययना बैठक या शून्य इले श्रम संस्कृति पार्टी अध्यक्ष हर्कराज राय प्रधानमन्त्री शाह ब्यादिगु नोचु वेक्ल संसदीय वया भिङ्के मागु संसदीय नियमावली फुक्क नियमता प्रभावकारी कथन छेलाबुला याना सदन यता मर्यादित कथन ह्याके माग विशेष सभाया ध्यान कोसला दिल अध्ययना राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संसदीय दलया नेता ज्ञान बहादुर साई इभी गाडी आयात विशेष शङ्का खने दुगुली संसदीय छानबिन समिति मागु व छानबिन समिति अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले यता ज्या याके मविष्य मगागु थथ्विके गुनीति माग्याना दिलसा अथियाना सांसद संसापा निशेन ताप्लेजुङ तकया मेची रारबार्ग तबया केगु दिपा नेपाली माइती घरे ङे पेनोनिसे धर्नाखे चुना चुङ्गु कर्णाली राजमार्गया थिथी थासे चलौ खुसी बाया हुने यात्रुत हाथ्या फेमाला चुङ्गु विशेष खतया दिगुदुस अथियाना निवा तक्क न नियम सकल सेवाग्रह याता प्रभाव लाकु धासे थुकियाता खारेज याना साबिक्या हे कथ थुकेता नचक निनादिस अथियाना सांसद व्या निनु विदा बिगु नियम सकल सेवाग्रह याता लिचो लाकु धासे थुकियाता खारेज याना साबिक या हे विदा छेलाबुला याता माग याना दिगु दुसा सांसद शून्य इले नुवागु ख याता छेलाबुला मुजुगु परिपाटी हो संसद जनपक्ष मुद्दा त लुहसा सरकार उकियाता व्यवस्था याना चङ्गु विशेष कुङ्खिना दिल प्रतिनिधि सभाया बैठक थौ झिन छ त इले चोनिगु कोसादु परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल नक्तिनी फुङको भारत भ्रमण विशेष राष्ट्र सभाया जानकारी आका दिगुदु राष्ट्र सभाया मिग्या बैठक विशेष इले माफना परराष्ट्र मन्त्री खनाल नहुगु सरकार औपचारिक प्रतिनिधि यासे वयागु भारत भ्रमण निगु देत्य बहुआयामिक स्वपियाता अञ्च सेला किगु थया दिगु दुस अथ्याना राष्ट्र सभाया बैठक सांसद नेसलिस कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरी किसान तेता शाह मोजी माधका सरकार असार मसान्त तक्क खुगु लाख मेट्रिक टन रसायनिक सा इनेगु जानकारी बिया दिल मन्त्री चौधरी आतक सरकार पेङ्गुला खुई च्यादो झिङ खुगु मेट्रिक टन सा ललाधुनागु जानकारी

खसा थोजोले पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेपाल व खनाल भुतीसँग कार्यदलले सामूहिक कथा सलभ्याक गुख गृहमन्त्री सुदन गुरुङ विपद व्यवस्थापन नापा माग उपकरण न्यात छु कानुनी पङ्ग दुगु धेयादिगु दु प्रतिनिधि सभा कथया राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति अमिगसँग बैठक गृहमन्त्री गुरुङ हाठ्याँ जागु मनुतेत उदारियागु नीति विश्व बजारे सुविधा जागु जोल त दुसाना सार्वजनिक खरिद एनिया हुने मनसुनिया इले थो जोल त छेलेता थाकुइगु धेयादिगु दु मन्त्री गुरुङ सिन्धुपाल्चोकको काभ्रे पलाञ्चोके हापाङको खुसी उच्च पार्वन क्षमता ड्रोन पाखे राहत इनेगु धेयादिगु दु अध्ययन बैठक लागु औषध नियन्त्रण विशेष विद्यमान व्यवस्था नापाङ कुत विशेष अध्ययन प्रतिवेदन दिएका वैगु साउन 15 गते दुने दुत वित्त गृह मन्त्रालय यता उच्च भ्यादिगु दु अध्ययन बैठक समिति कार्यक्षेत्र कथन दुगो मन्त्रालय नापा निकाय ज्याया विशेष अध्ययन व सहजीकरण यागु नापा ज्या यात गतिशील देखेता थिति पेङ्गु उपसमिति निसङ्गु दु कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोभिता गौतममा देके मागु कानुन मस्यौदा यात मन्त्रालय यात इनाफ्याना दिगुदु मिग भूमि व्यवस्था सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावल व महिला बालबालिका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सीतावादी नापा निगु मन्त्रालय अधिकारी पी नापा सलभ्याका दिशे मन्त्री गौतममा याक्न विधेयक मस्यौदा यात इनाफ्याना दिगु ख बैठके वैगु आर्थिक दे मन्त्रालय संसदीय दूत बी मागु विधेयक दिएको सूची इलेहे पुङ केता विधेयक स्पष्ट यी कोची माग विशेषण सलजुगु ख मन्त्री गौतम हत्या मचासे कानुन देखिबले माको छेन्ज्या याना छिलाबुला अफुगु व अस्पष्ट व परस्पर विरोधी भ्या दुसा कानुन राज्य यी श्रम शक्ति स्रोत या महामदुगु खर्च याइगुने थुके पाके सच्च जुइत इनापेना दिल ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय निसङ्ग उच्चस्तरीय समिति ज्या मयाइगु सुई च्यागु जलविद्युत आयोजना या लाइसेन्स खारेज या यता सिफारिस यागुदु सरकार स्वच्छ धलय शासकीय सुधार कार्ययोजना कथा ऊर्जा मन्त्रालय सहसचिव मोहन साक्य समेत जगती निसङ्गु समिति मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ यता ललहाको प्रतिवेदन थुज्यागु सिफारिस याना तगुदु प्रतिनिधि सभा कथया महिला तथा सामाजिक मामिला समिति सामाजिक परिचालिका व्यवस्थापन नापाया ता देखको प्रतिवेदन या ता थ्या बिगु व पूर्ण कथन छिराबुला या ता उच बिगु दु समिति मिगो चङ्गु बैठक सामाजिक परिचालिका या ता थ्या बिया स्वापुदुगु फुक्क मन्त्रालय वेक पिनीको भावना कगाता उज बिया त अगुदु मध्य प्रदेश सभा सरकार नीति व ज्याजो सर्वसम्मति पारित आगुदु प्रदेश सभा मिगो चङ्गु बैठक नीति व ज्याजो दति सल स प्रदेश सभा दुज पिस तगु नेसालिस स अर्थमन्त्री युवराज भट्टराई बिया दिगु बजेट निर्णयार्थ दुत बि धुङ्कानी सर्वसम्मति पारित आगु ख आदेश पिनिया बुख अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प इरान दति मड्डिक यागु आक्रमण सोनिय दिने वया डिकेगु घोषणा यास तेरा नापाया सम्झौता लिपाङ्गु थासे ठेङ्गु दाबी दिगुदु वैक्ला सम्झौता लाची तेगु लागा वो ई याक्ना सार्वजनिक यायगुन बचन पोङ्का दिगुदु थ्यान ह्य ट्रम्प इरान दति तस्क आक्रमण यागु ख्याचो विषय खाक टापु नपाया चिकन पूर्वाधार या त निशाना देखेगु ख्याचो ब्यादिगु ख तेह्रान या क्षमा वरिष्ठ इरानी अधिकारी या त निथसे प्रस्तावित समझदारी पौस इरान या उच्च नेतृत्व तहस विचार जुया चुङ्गु व थुके हस्ताक्षर पाखे नपुपिथनी गुनापा थागु दु अथे जुसान यी दासा आतकन ओछि धुङ्कगु मधुनी थोयदथ्यो इरान या इस्लामिक रिभोल्युसनरी गार्ड कोप्स आईआरजीसी अमेरिका या निकगु डि या आक्रमण या लिस कथम बहराइन कुवेत जोर्डने दुगो अमेरिकी सैन्य सम्पत्ति दति आक्रमण यागु धागु दु आईआरजीसी होर्मुज लागा तिना बिगु घोषणा न या धुङ्कगु दु आकाशया जानकारी विश्व फुटबल या महाकुम्भ विश्वकप ढ्याँट्या बल्ला वङ्गु चाने निसिन ह्यागु दु घरेलु मैदानी जुगु उलेज्या कासा मेक्सिको दक्षिण अफ्रिका यता बुकोसेन फिफा विश्वकप फुटबल 2026 उलेज्या कासा स बाला कगु कथा पला छिगु दु स्थानीय सिटी रङ्गशाला मिगो जुगु कासा स घरेलु पुच मेक्सिको दक्षिण अफ्रिका यता शून्य या विरुद्ध निगु गोल अन्तर बुकोसेन ठेन्डे बल्ला बाला क निच्या कगु ख कासा स सुङ्गु सोमा सिना रेड कार्ड नापा कागु ख कासा पी गुगु मिनेते दक्षिण अफ्रिका सेफेलो सिथो लन
सिथो ल।

चु रेडियो नेपाल हिन्ना तामाङ सानगिर रेढाङनी दा ढेनमुला ङ इन्दिरा थिङ प्रतिनिधि सभाला तिनी लाची साङसे विनियोजन विधेयक 2083 थोरी विचार लातोजी विवाह प्रस्ताव स्वीकृत लाभामुला चिसाङरी नोरब्लोन डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेसे विचार लातोजी विषय थान्स्युबा विधेयक थोरी काठुई लिछा सभासे स्वीकृत लाभा हिन्ला काठुइरी थोनबा विषयरी जवाब फिन्स्युबान नोरब्लोन डाक्टर वाग्लेसे चु रेम पुँजीगत खर्च योनान लवारी खामगाई बिसी नोर ब्लोन खाङसे राङला पो सम्बन्धित ब्लोन खाङदा पिनबा मुला बिसी सुङबा मुला नोर ब्लोन डाक्टर वाग्लेसे चालु खर्च ग्रेन आतागाई थेन विनियोजित पुँजीगत खर्च लाना तागाई विवा सरकारसे मानबा मुला बिसी सुङबा मुला काठुइरी सांसद कादेसे चालु खर्च थेन पुँजीगत खर्चरी ताम ढिकपारी आखाम्बासे चालु खर्चदा प्रभाव कारी लासी सेङबारी सेम पिनबारी खाम्बा आरे बिसी सुङबा मुला सांसद कादेसे स्थानीय तहला स्रोत थेन अनुदान च्याङना शोभा सङ्घ सरकारसे प्राथमिकतारी थान्दोबा ताम्रिन प्राथमिकता पिनबारी खाम्बा आरे रोजगारी पिनबा ताम खाबारी आखाम्नी बिसी सुङबा मुबा चिसाङरी सुङबोन डोल प्रसाद अर्यालसे विनियोजन विधेयक 2083 ला लोलो लोलो ब्लोन खाङ थेन लोन खाङ ङामला शीर्षक कादे थोरी काठुई लाबारी थोनबा प्रश्नरी ब्लोन कादेसे जवाब फिनबारी असार घिक्ला कुनु हेन्से भ्लिला कुनु धोनादा दुई तोकला शिवबा मुला सुङबोन अर्यालसे विनियोजन विधेयक री लोलो लोलो शीर्षक कादेला काठुरी पो किनबारी सम्बन्धित विनियोजित शीर्षक कादे री काठुई लाबा रा चिसाङ चिबा भीमा घण्टा गिक गाछा दलीय गोबाङ लाबान कार्य व्यवस्था शाखारी मिन दुईबारी मोइजेन लासिउबा मुला राष्ट्रिय सभाला तिनी चिबा चिसाङरी नोर्दिङ 2083-84 ला राजस्व थेन ब्यायला नोर अनुमान थोरी काठुई लाबामुला काठुइरी नेपाली काङ्ग्रेसला सांसद नारायण दत्त मिश्र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीला सांसद झक्कु प्रसाद सुवेदी नेकपा एमालेला सांसद सम्झना देवकोटा जनता समाजवादी पार्टीला मोहम्मद खालिद ललित जङ साई सुरेश कुमार आले मगर थेन राम कुमारी झाँक्रिसे पो किन्स्युबा मुबा चुङाछा चिसाङरी सांसद कादेसे समसामयिक विषयरी सरकारला ध्यान छेङना लासियुबा मुबा चिसाङरी काइब्लोन बालेन्द्र शाह वाना ग्याम जामे कोला जाजा कोला लैङ्गिक थेन यौनिक अल्पसंख्यक थेन युलबाङ सुरक्षा ब्लोन सीता बहादिसे युलबाङ समावेशी आयो ला नोर दिङ 2081-82 ला निश्चा तिदिङ प्रतिवेदन सवारी थान्स्युबा मुबा राष्ट्रिय सभाला चिसाङ दोषी असार घिक्ला कुनो धिनेरी चिबा गेखोर मुला सरकारसे निजामती सेवा चुई ढुछा संशोधन निमावली 2083 स्वीकृत लाभा मुला तिनी चिबा ब्लोन सेङ झाङला चिसाङसे लाभा निर्णय कादे सुङबान सरकारला सुङबोन थेन स्यार थेन क्लाङ ब्लोन सस्मित पोखरेलसे निजामती सेवा चुई ढुछा संशोधन निमावली स्वीकृत लाभा मुला बिसी सुङबा मुला ब्लोन सेङ झाङला चिसाङसे गाछाला दिम्ब्लोन थेन प्रतिनिधि सभा सदस्य सुधन गुरुङला ताम्री च्याबा गोबारी शोभा समितिसे थान्बा प्रतिवेदन किन्बा निर्णय लाबा मुला चिसाङरी विशाल कुमार भण्डारीला चोबाङरी नेपाल रेडक्रस सोसाइटीला कुसदस्य तदर्थ समिति शोभा निर्णय लाबा मुला बिसी ब्लोन पोखरेलसे सुङबा मुला ब्लोन सेङझाङला चिसाङला निर्णय कादे सार्वजनिक लासियुबा धुइरी सानग्युर बोन कादेसे न्योइबा ताम्री ब्लोन पोखरेलसे काइब्लोन बालेन्द्र शाह तोबा धुइरी राङला ताम कादे थानबारी सदनडी खासियुला बिसी सुङबा मुबा काभ्रे पलाञ्चोकला नमबुद्ध नगरपालिका नि बुचा कोटरी बस दुर्घटना तामा मेन्दोब्रे मिनी घटना ताबा घ्लारिन सिबा मुला बनेपा हेन्से रोसी गाउँपालिका क्यार निबान लाबा बा दुई ख 8398 नम्बरला बस बुचा कोटरी तिनी दिनीला नि घ्यामा सडक ग्यालाम ग्याम ग्यार्जा नि मिटर मार पाइबा मुबा दुर्घटनारी ड्राइभर लाछ्याम मेन्दो चुइडु मिनी घाइते ताबा मुला बिसी जोङ प्रहरी गेजाङ काभ्रे पलाञ्चोकला प्रहरी नायब उपरीक्षक रबिन विष्टसे सुङबा मुला प्रहरीसे पाङबा अनुसार घाइते कादेला दुलीखेल अस्पतालरी मान लाबान मुला विज्ञान थेन नव प्रवर्धन ब्लोन महावीर पुन्से प्रदेश थेन स्थानीय
सरकार दा राङला पुँजीगत खर्च लागि प्रतिशत टाङ्गा विज्ञान थिएन प्रवर्धन रि नव प्रवर्धन रि फेब्रुअरी मोइजेन ला शिवा मुला ब्लोन पुन्से सामाजिक सञ्जाल ग्याम विज्ञान थिएन नव प्रवर्धन ला अनुदान किनबारी राङला पुँजीगत खर्च लागि प्रतिशत टाङ्गा विज्ञान थिएन नव प्रवर्धन रि फेदो बा ताम्दा गोसी बजेट सोबारी प्रदेश थिएन स्थानीय सरकार दा मोइजेन ला शिवा खिन्ला तिनी जाम्बुलिङ जाजाकोला दिन्छेन लोलो लोलो गेखोर सेङसी धाङबान मुला जाजाकोला कादेला जाम्बुलिङ रिन मुबा समस्या थिएन चुदा थुम्ना लाबारी मिनिदा छोरङान लेना लाबारी बिसी तिनी जाम्बुलिङला लाना नि हुल्डी चु दिन्छेन धाङबान मुला जाम्बुलिङ श्रम घेन्दुन आइएलओला होचेङरी सन् 2002 हेन्से दिङे दाङसे जुन चुई निरी चु दिन्छेन धाङबारी ती बाहिनला जाम्बुलिङरी करोड निचुई ब्लिसे लाख डुचुई जाजा कोला कादे गे लाबा संख्या च्याङना तासी दाते करोड चुई सेम लाख ब्रेचुइरी ताइबा मुला ऊर्जा क्युनेर थिएन सिंचाई ब्लोनखाङ से शोभा ग्रेन स्तरीय समिति से गे आलाबा गोर सोमची ब्रे जलविद्युत आयोजनाला लाइसेन्स खारेज लाबारी सिफारिस लाबा मुला सरकारला चुई बुधे शासकीय ग्यार्जगिक बुधे शासकीय सुधार गे योजना अनुसार ऊर्जा ब्लोनखाङला रो रोन मोहन साक्यला थुतबोन्डी शोभा समिति से ब्लोन विराज भक्त श्रेष्ठदा पिनबा प्रतिवेदन डी चु सिफारिस लाबा खिन्ला स्यार्थेन क्लाङब्लोन खाङसे ब्रिबा डोबा भिसा सिफारिस लामा शङ्का ताबा मराङबा लिछा च्यासी साइसी ठिम अनुसार कारबाही लाबारी दिम्ब्लोन खाङदा चिठी पुइबा मुला स्यार्ब्लोन खाङसे दिम्ब्लोन खाङदा पुइबा चिठी रि स्यान्दो युलग्याम खाबा लोबोन कादेदा पिनबा ब्रिबा डोबा भिसा सिफारिस लामा शङ्का ताबासे च्यासी साइसी ठिम अनुसार गे घाछा बोरबारी चिठी ब्रिबा हिन्ला ब्लोन खाङरी पिनबा तिलाई कागजात थिएन रसिद रिनोन शङ्का ताबा मुलाबिसी स्यार्ब्लोन खाङसे पाङबा मुला याम्बु उपत्यका अनुसन्धान गेजाङला टोलीसे अमेरिका थिएन क्रोएसिया पुइसी पिन्ना बिवाना लाक ब्लिचुई से तोङ घाचुई ठगी लाबा मेन्दो निदा प्रहरीसे तिलमा सार्वजनिक लाबा मुला दोलखा सैलुङ गाउँपालिका निला ब्लिचुई घा दिङला रुकु कुमारी श्रेष्ठ थिएन मोरङ उर्लाबारी नगरपालिका ढुइला सोमचुई घा दिङला शैलेन्द्र साक्यदा चुङबा मुलाबिसी याम्बु उपत्यका अनुसन्धान गेजाङला प्रहरी उपरीक्षक शरद कुमार थापा छेत्री से सुङबा मुला फिफा विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता 2026ला समूह एला निछा क्लाङबारी लो कोरिया से चेक रिपब्लिक दा भ्रेना लाबा मुला मेक्सिकोला ग्वाडार जारा रङ्गशालारी क्लाङमा लो कोरिया से गोल नि लाबा मुबा विषाम चेक रिपब्लिक से गोल गिक लाबा मुबा समूह एलान तिलमा मुना आयोजक हिल युल मेक्सिको से लो अफ्रिका दा ब्रेना लाबा मुबा चुराङ लासिन नाङ्गार स्योला चुई घ्यासी ब्लिचुई घा मिनेट हेन्से क्यानाडा थेन बोस्निया हर्ज गोबिना थेन स्योला डु घ्यासी ब्लिचुई घा मिनेट हेन्से अमेरिका थेन प्यारा गो क्लाङबान मुला कैलालीला गोदावरी गान्धीरी खावा भाल्से ब्योङना लामा मेन्दोनी झामेकोला सिबा मुला भाल्से ब्योङना लामा गोदावरी नगरपालिका भिला महेश्वरी धमलाथेन कल्पना साउथ सिबा मुलाबिसी इलाका प्रहरी गेजाङ माला खेती से पाङबा मुला मेन्दो निनोन झामेकोला तिनी स्योरी श्यामु थुबारी रि निबा धुरी गोदावरी गान्धी से ब्योङना लाबा मुबा स्यान्चुबान मुबा सानगिर झिन्जी फ्याफुल्ला।

ये रेडियो नेपाल है, हफीज खान से उर्दू में खबरें सुनिए। हुकूमत ने आइन में तरमीम से मुतालिक बहसनामा तैयार करने वाली मजलिस आमला की मियाद में आइंदा असाढ़ के अवाखिर तक इजाफा करने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म बालेंद्र शाह के चीफ सियासी मुशीर असीम शाह की क़ियादत में आइन में तरमीम से मुतालिक बहसनामा तैयार करने वाली मजलिस आमला अपने काम में लगी हुई है। वज़ीर आज़म और काबीना दफ्तर सिंह दरबार में आज मुनक़िदा अजलास ने सरकारी और अवामी ज़मीन से मुतालिक तहकीकात और तहफ़ुज़ से मुतालिक आला सतही कमीशन रावल कमीशन की रिपोर्ट 2052 पर अमल दरामद करने के लिए वजारत अराजी बंदोबस्त कोऑपरेटिव वफाकी उमूर और अमूमी इंतजामिया को हिदायत करने का फैसला किया है। उसी तरह हुकूमत के तर्जुमान और वजीर तालीम व खेल सस्मित पोखरेल ने बताया कि इजलास ने लेखामान बोर्ड के सदर के ओहदे के लिए सिंधु पालचो के रमेश कुमार धिताल को नामजद करने का फैसला किया है। सुस्ता में भारतीय SSB फौज दाखिल होने के बारे में नशरियाती अहलकारों के तजस्स पर वजीर पोखरेल ने सरहदी इलाके में नेपाली शहरियों ने बरसों से अपनी हिफाजत खुद करने की बात बताते हुए कहा कि इससे मुतालिक वजारत खारजा के ज़रिए ज़रूरी इकदाम किए जाएंगे। साथ ही वजीर पोखरेल ने बताया कि नेपाल भारत सरहदी तनाज़ों के सिलसिले में हुकूमत सफारती मुज़ाकरात के ज़रिए मसले हल करेगी। ऐवान नुमाइंदगान के

ई रेडियो नेपाल थिक अरविन्द्र मिश्रसँग मैथिलीमा समाचार सुनल जाय। प्रतिनिधि सभाक आजुक बैठक अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण विधेयक 2083 उपर विचार कयल जाकै प्रस्ताव के सर्वसम्मति सँ स्वीकृत कयलक अछि। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री खड़ग राज पौड़ेल राष्ट्रसभा में उत्पत्ति भेल एहि विधेयक उपर विचार कयल जाकै प्रस्ताव पेश कयने छलथि। सांसद लोकनि राखल गेल जिज्ञासाक जवाब में मंत्री पौड़ेल अमूर्त सम्पदाक संरक्षण के महत्वपूर्ण पक्ष आर्थिक उपार्जन के एकटा मार्ग खोलब भेल बतौलनि। ओ अमूर्त सम्पदाक संरक्षण के लिए सरकारक दिस विशेष पहल प्रयास हेबाक बात बतौलनि। सरोकार वाला निकाय को ओतबे साथ आ सहयोग रहबाक मंत्री पौड़ेल के कथन छल। विधेयक राष्ट्रीय स्वाभिमानक जगरना करबाक, नेपाली हेबाक पहचान के सही अर्थ देबाक आ हमरा सब द्वारा अभ्यास करैत आयल ऐतिहासिक पारंपरिक ज्ञान पद्धति के मान्यता देबाक स्पष्ट कयलनि अछि। संस्कृति के पर्यटन संग जोड़बाक लेल अधिकतम प्रयास आवश्यक रहल उल्लेख करैत मंत्री पौड़ेल नेपालक अनेकन यात्रा आ पर्व एहि के उदाहरण भेल उल्लेख कयलनि। एहिसँ पहिने सांसद लोकनि कृपया महर्जन, प्रकाश चंद परियार, प्रमिला कुमारी गस्तार, गणेश कार्की, समीक्षा बासकोठा, अनुष्का श्रेष्ठ, रीमा विश्वकर्मा, ताहिर अली भट्ट, रंजू न्यूफाने, परशुराम तामांग, राजीव खत्री, गुरुप्रसाद बराल, रुकेश रंजीत, आशीष गजुरेल, रहबर अंसारी, भरत गिरी, भीम कुमारी बूढ़ा, सुमनिमा उदास, सुलभ खरेल, संजीता खातून सिद्दकी, विश्वराज पोखरेल, मदन कृष्ण श्रेष्ठ, मनमाया विश्वकर्मा विधेयक के विविध पक्ष पर अपन धारणा रखने छलथि। बैठक में युवा श्रम तथा रोजगार मंत्री कार्यभार संभाल उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री गौरी कुमारी, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठनक श्रम निरीक्षण संबंधी महासंधि 1947 नंबर 81 पेश कयलनि। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठनक बाध्यकारी श्रम महासंधि 1930 संबंधी 2014 के प्रोटोकॉल नंबर 29 पेश कयलनि। प्रतिनिधि सभाक दोसर बैठक आबवला अखार एगते सोम दिन भिनसर 11 बजे बैसत। राष्ट्रसभा के सदस्यगण आर्थिक वर्ष 2083-84 के प्रस्तुत बजट के जनता केंद्रित बनेबाक लेल सुझाव देलनि अछि। राष्ट्रसभा के आजुक बैठक में आर्थिक वर्ष 2083-84 के राजस्व व्यय के वार्षिक अनुमान ऊपर के सामान्य छलफल में भाग लेत सांसद नारायण दत्त मिश्र नेपाल में अर्थतंत्र ऊपर अनेको चुनौती रहला कारण एहि के संबोधन करबाक बजट परिमार्जन करबाक लेल सरकार के सुझाव देलनि। सांसद झक्कू प्रसाद सुवेदी सीमांतकृत समुदाय मैत्री बजट हेबाक बात पर जोर दलन। सांसद संजना देव कोठा प्रस्तुत बजट चालू आर्थिक वर्षक बजट के संशोधित आकार सँ 25.2% सँ वृद्धि होयब स्वयं में महत्वाकांक्षी भेल बतौलनि। सांसद मोहम्मद खालिद अगला आर्थिक वर्षक बजट सँ महगी बढ़ेबाक जनता में मरका में पड़ सकबाक अवस्था के देखल गेल बतौलनि। सांसद ललित जंगशाही गरीबी के नीचा रहल जनता के शिक्षा स्वास्थ्य निःशुल्क बनेबाक लेल बजट केंद्रित होयबाक धारणा रखलनि। सांसद सुरेश कुमार आलेमगर बजट राखल गेल 7% आर्थिक वृद्धि के लक्ष्य हासिल करबाक लेल मेहनत कयल जेबाक बात बतौलनि। सांसद राम कुमारी झाकड़ी बजट देशक व्यवहारिक समस्या समाधान कह सकला पर आशंका व्यक्त कयलनि। सांसद दुर्गा गुरु बजट स्वदेशी में रोजगारी सृजना करबा दिस बात देखाओल जेबाक नहि भऽ सकल बतौलनि। सांसद नर बहादुर बिष्ट नेपाली समाजक आवश्यकता के संबोधन कह सकबाक धारणा रखलनि। सांसद सोमनाथ पोर्टेल दलित समुदाय सँ माफी मंगबाक आ सुधारक कार्यक्रम अनबाक वाचा पूरा करबाक लेल आग्रह कयलनि। सांसद राजेंद्र लक्ष्मी गारे महिलाक दबल आवाज के संबोधन करबाक लेल कार्यक्रम सहित बजट परिमार्जन करबाक सुझाव देलनि। सांसद रोशनी मेचे पूंजीगत सँ अधिक चालू खर्च भेलाक कारण विकास निर्माणक अपेक्षा पूरा नहि भऽ सकबाक बात बतौलनि। बैठक में सांसद विष्णु कुमारी सापकोटा, वासुदेव घिमरे, भुवन बहादुर सुनार, गीता देवकोटा, विष्णु बहादुर विश्वकर्मा, श्रीकृष्ण प्रसाद अधिकारी सहित बजट के जनमुखी बनाओल जेबाक धारणा रखलनि। आर्थिक वर्ष 2083-84 के राजस्व व्यय के वार्षिक अनुमान ऊपर के सामान्य छलफल जारी रहलाक कारण सभाक दोसर बैठक अखार एगते दिन के 1:15 बजे बैसत। सरकार संविधान संशोधन बहस पत्र तैयार करबाक कार्यदल 2083 के अवधि थप करबाक निर्णय कयलक अछि। आजुक मंत्री परिषद बैठक कार्यदलक म्याद अवधि अखार मसान धरि थप करबाक निर्णय कयल। शिक्षा तथा खेलकूद मंत्री एवं सरकारक प्रवक्ता सस्मित पोखरेल जानकारी देलनि। बैठक सरकारी तथा सार्वजनिक जमीन छानबीन एवं संरक्षण संबंधी उच्च स्तरीय आयोग
रावल आयोग के प्रतिवेदन, 2052 कार्यान्वयन करबाक लेल भूमि व्यवस्था, सहकारी संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय के निर्देशन दल सेहो निर्णय कलक अछि। संगहि लेखा मान बोर्डक अध्यक्ष पद पर रमेश कुमार तिताल सिंधुपाल चौक के मनोनयन करबाक निर्णय कयल जनौलक अछि। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड 7 दिन भीतर बाकी महसूल नहीं बुझौला पर कानून अनुसार बक्योता रकम असूल ऊपर करबाक चेतावनी देलाक बाद विभिन्न 10 औद्योगिक क्षेत्र में संचालित उद्योग महसूल बुझाव लागल अछि। औद्योगिक क्षेत्र में संचालन में रहल उद्योग सब पछला सूचना के आधार पर 1 करोड़ टका से अधिक बक्योता भुगतानी कऽ चुकल लिमिटेडक सूचना अधिकारी वासुदेव सोरारी जानकारी दलन। सरकारक स्वामित्व में रहल लिमिटेड यही ज्येष्ठ 25 गते सूचना जारी करित उद्योग के 7 दिन भीतर बक्योता रकम बुझेबाक लेल निर्देशन देल गेल छल। 300 से अधिक उद्योग महसूल बापत 88 करोड़ से अधिक बक्योता तिरब बाकी अछि। उद्योग मंत्री गौरी कुमारी उद्योगी सब तिरब वाला बक्योता तत्काल असूल करबाक निर्देशन ओ देने छलथि। काठमांडू पत्रिका किछु स्थान सँ प्रयोग विहीन भेल तार हटेबाक कार्य आगू बढ़ल अछि। ऊर्जा जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्रालय सूचना तथा संचार मंत्रालयक अग्रसरता में ई कार्य आगू बढ़ल अछि। त्रिपुरेश्वर कालीमाटी कलंकी जड़ीबूटी पेप्सिकोला त्रिपुरेश्वर लाजिमपाट सामाखुशी टाउन प्लानिंग गोंगबू कृतिपुर तथा पुरानो बानेश्वर गौशाला चाबिल क्षेत्र में ई तार सब हटाब लागल अछि। तार हटलाक बाद शहरी सौंदर्यता में वृद्धि, सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चितता तथा सड़क क्षेत्र में होबय वाला जोखिम न्यूनीकरण हेबाक विश्वास लेल गेल अछि। मधेश प्रदेशक प्रदेश प्रमुख डॉक्टर सुरेंद्र लाल कर्ण समक्ष मुस्लिम आयोग अपन 7वां वार्षिक प्रतिवेदन आइ पेश कलक अछि। प्रदेश प्रमुख डॉक्टर कर्ण समक्ष मुस्लिम आयोग कार्यवाहक अध्यक्ष मोहम्मदीन अली आयोग आर्थिक वर्ष 2081-82 में संपादन कयल गतिविधि सहितक प्रतिवेदन बुझाओल प्रदेश प्रमुखक कार्यालय जानकारी देलक अछि। नेपालक संविधानक धारा 294 के उपधारा 3 अनुसार तैयार कयल गेल प्रतिवेदन में आयोग गत आर्थिक वर्ष भरि कयल गतिविधि कार्यक्रम तथा उपलब्धि सब समेटल गेल जनौलक अछि। प्रतिवेदन ग्रहण करैत प्रदेश प्रमुख कर्ण आयोग मुस्लिम समुदायक हक हित अधिकार संरक्षण के लेल खेलल भूमिकाक प्रशंसा करैत प्रतिवेदन में उठाओल गेल विषय वस्तु सँ नीति निर्माण तथा कारण में सहयोग पहुँचबाक विश्वास व्यक्त कयलनि। मुस्लिम आयोग एहि समुदाय में भेल समस्या चुनौती तथा समाधानक उपाय संबंध में अध्ययन अनुसंधान तथा सरोकार वाला निकाय सँ समन्वय करैत विभिन्न कार्यक्रम संचालन करैत आयल जनौलक अछि। प्रदेश प्रमुख कार्यालय प्रवक्ता संजीव कुमार दुबे संविधान द्वारा व्यवस्था के अनुसार औपचारिक रूप में मुस्लिम आयोग प्रदेश प्रमुख समक्ष प्रतिवेदन बुझाओल जानकारी देलनि। अपराधक सही अनुसंधान तथा कुशल अभियान सँ समाज में शांति सुरक्षा तथा सुशासन में भारी मदद पहुँचबाक एहि क्षेत्रक विज्ञ सब बतौलनि अछि। मधेश प्रदेशक गृह संचार तथा कानून मंत्रालय नेपाल प्रहरीक अपराध अनुसंधान विभाग संयुक्त आयोजन में तथा मध्य प्रदेश प्रहरी कार्यालय समन्वय में प्रदेश स्तरीय 1 दिवसीय अपराध अनुसंधान समीक्षा गोष्ठीक आई जनकपुर धाम में संबोधित करैत विज्ञ सब ई बात बतौलन। वो लोकन कतेको विकसित देश सब में अपराधक सही अनुसंधान तथा उत्कृष्ट परीक्षण के कारण अपराधक मुद्दा सब 99.9% सफलता मिलबाक बतबैत नेपाल में अपराध अनुसंधानक लेल थप पूर्वाधारक निर्माण में राज्य लगानी बढ़ाओल जेबाक धारणा रखलन। गोष्ठी के उद्घाटन करैत मध्य प्रदेशक गृह संचार तथा कानून मंत्री फकीरा महतो सफल अपराध अनुसंधान न्याय स्थापना के पहिल डेग भेल कहित अपराधक सही अनुसंधान सँ न्याय स्थापना तथा सुशासन में भारी मदद पहुँचबाक बात बतौलन। ओ मध्य प्रदेश तथा देशक अपराध अनुसंधान में पिछला समय में नेपाल प्रहरी किछु प्रगति कलाक बावजूदो पिछला समय में डिजिटल तथा सीमा अपराध चुनौती के रूप में देखल गेल एकर सही अनुसंधानक लेल प्रविधि तथा दक्ष जनशक्तिक सिरहा गोल बाजार नगर पालिका वार्ड नंबर 13 दुर्गापुर स्थित सिमराज चोर में सिंचाई के लिए जलान कल 11,000 वोल्ट क्षमता ट्रांसफार्मर बुध दिनक रात चोरी भेलाक बाद सैकड़ों किसान प्रभावित बनल अछि। खेती पाती के मुख्य समय में विद्युत आपूर्ति अवरुद्ध भेला सँ सिंचाई सेवा ठप्प बनल अछि। ट्रांसफार्मर चोरी भेलाक बाद आब डीजल पंप व अन्य वैकल्पिक स्रोत के सहारा लेबय पड़ल। एहिठामक खेती में लागत बढ़ल आ बढ़बाक बात किसान सब ओहिठाम बतौलनि अछि। सप्तरीक राजबिराज स्थित वेटरनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केंद्रक भवन निर्माण ठेका में मिलो मतों में राज्य के 1,26,00,000 टका से अधिक नुकसानी पहुंचाल आरोप में अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग 4 गोटे आ 1 निर्माण कंपनी विरुद्ध विशेष अदालत काठमांडू में भ्रष्टाचार मुद्दा दायर कलक अछि। रेडियो नेपाल सँ सुनै छलहुँ मैथिली भाषा में समाचार समाप्त भेल।

शीर्ष से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। सरकारी एवं सार्वजनिक भूमि जांच तथा संरक्षण संबंधी उच्च स्तरीय रावल आयोग की रिपोर्ट लागू करने का सरकार का निर्णय। कावरे पलांचोक के नमोबुद्ध में हुई बस दुर्घटना, 8 लोगों की मौत, 16 घायल। ट्रेड यूनियन समाप्त करने के सरकारी निर्णय के खिलाफ दायर याचिका में अंतरिम आदेश जारी रखने के से सर्वोच्च अदालत का इनकार। परराष्ट्र मंत्री शशि खनाल चीन दौरे पर जाएंगे परसों। और भारत की राजधानी दिल्ली में 5 मंजिला इमारत में आग लगने से 3 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। काभरे पलांचोक की नमोबुद्ध नगर पालिका 2 स्थित बुचाकोट के सेल्फी डांडा में आज हुई बस दुर्घटना में मृत 8 लोगों में से 4 की पहचान हो गई है। जिला प्रहरी कार्यालय के अनुसार मृतकों में रोशी गांव पालिका 7 की 34 वर्षीय फूलमाया तामांग, रोशी 6 के 75 वर्षीय इंद्र बहादुर झांकरी, 60 वर्षीय प्यारी माया तामांग और दैलक निवासी 3 वर्षीय पम बहादुर भंडारी शामिल हैं। पुलिस के अनुसार भंडारी नेपाली सेना में अमलदार पद पर कार्यरत थे। पनेपा से रोशी गांव पालिका 6 सुंगुरे जा रही BA2K8398 नंबर की यात्री बस आज दोपहर बीपी राजमार्ग अंतर्गत नमोबुद्ध 2 बुचाकोट की पहाड़ी से नीचे गिर गई थी। दुर्घटना में 16 लोग घायल हुए हैं जिनका इलाज धूलीखेल अस्पताल में जारी है। सरकार ने संविधान संशोधन बहस पत्र तैयार करने के लिए गठित कार्यदल की अवधि आषाढ़ मासांत तक बढ़ाने का निर्णय किया है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के प्रमुख राजनीतिक सलाहकार असीम शाह के नेतृत्व में कार्यदल संविधान संशोधन की संबंधी बहस पत्र तैयार करने का काम कर रहा है। सिंह दरबार में आज हुई मंत्रिपरिषद बैठक ने सरकारी एवं सार्वजनिक भूमि जांच तथा संरक्षण संबंधी उच्च स्तरीय रावल आयोग की 2052 की रिपोर्ट लागू करने के लिए भूमि व्यवस्था सहकारी संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय को निर्देश देने का भी निर्णय लिया है। बैठक ने लेखामान बोर्ड के अध्यक्ष पद पर सिंधु पालचोक के रमेश कुमार धिताल को नियुक्त करने का फैसला किया। ये जानकारी सरकार के प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकूद मंत्री सस्मित पोखरेल ने दी। सुस्ता क्षेत्र में भारतीय SSB के प्रवेश संबंधी प्रश्न पर मंत्री पोखरेल ने कहा कि सीमा क्षेत्र की सुरक्षा में स्थानीय नेपाली नागरिक वर्षों से सक्रिय हैं और इस विषय पर विदेश मंत्रालय के माध्यम से आवश्यक कूटनीतिक पहल की जाएगी। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि नेपाल भारत सीमा से जुड़े विवादों का समाधान संवाद और कूटनीतिक माध्यम से किया जाएगा। प्रतिनिधि सभा की बैठक ने विनियोजन विधेयक 2083 और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत संरक्षण विधेयक 2083 पर विचार करने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकृति दे दी है। बैठक में अर्थमंत्री डॉ स्वर्णिम वागले ने कहा कि पूंजीगत खर्च को गति देने के लिए अर्थ मंत्रालय ने अपने कई अधिकार संबंधित मंत्रालयों को हस्तांतरित किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार चालू खर्च को नियंत्रित रखते हुए विकास एवं पूंजीगत खर्च बढ़ाने को लेकर प्रतिबद्ध है। विधेयक पर हुई चर्चा में सांसदों ने बजट में चालू और विकास खर्च के बीच संतुलन की कमी, स्थानीय तहों के अनुदान में कटौती, रोजगार सृजन की उपेक्षा और शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्रों के लिए पर्याप्त बजट न होने की बात उठाई। कुछ सांसदों ने कहा कि बजट विकास की बजाय ऋण और वेतन भत्तों पर अधिक केंद्रित दिखाई देता है। सभामुख डोल प्रसाद अर्याल ने विभिन्न मंत्रालयों के बजट शीर्षकों पर विस्तृत चर्चा के लिए 1 से 4 आषाढ़ तक का समय निर्धारित किया है। बैठक में एमाले के प्रमुख सचेतक एन बहादुर महर ने नवलपरासी के सुस्ता क्षेत्र में भारतीय SSP द्वारा कथित गतिविधियों पर सरकार का ध्यान आकर्षित कराया। वहीं सांसद मदन कुमार भंडारी ने सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की। प्रतिनिधि सभा की अगली बैठक 1 आषाढ़ को सुबह 11 बजे होगी। राष्ट्रीय सभा की आज की बैठक में आर्थिक वर्ष 2083-84 के बजट पर सामान्य चर्चा हुई। चर्चा में सांसदों ने कहा कि स्थानीय निकायों को पर्याप्त संसाधन और अधिकार दिए बिना विकास को गति नहीं मिल सकती। उन्होंने बजट में नए कार्यक्रमों की कमी, घोषित योजनाओं के लिए संसाधनों की अनिश्चितता, लाभ में चल रही नेपाल टेलीकॉम के शेयर बेचने के प्रस्ताव और युवाओं के लिए रोजगार सृजन कार्यक्रमों के अभाव पर चिंता व्यक्त की। सांसदों का कहना था कि बजट मुख्य रूप से मध्यम वर्ग को संबोधित करता है। सांसदों ने यह भी आरोप लगाया कि बजट में गरीब वर्ग, कर्णाली प्रदेश, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र की पर्याप्त उपेक्षा की गई है और युवाओं की बेरोजगारी दूर करने के लिए कोई ठोस योजना नहीं लाई गई है। बैठक में समसामयिक विषयों पर भी सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की ओर से महिला

0: बाल बालिका लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक एवं सामाजिक सुरक्षा मंत्री सीता वादी ने राष्ट्रीय समावेशी आयोग की आर्थिक वर्ष 2081-82 की वार्षिक रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत की। राष्ट्रीय सभा की अगली बैठक 1 आषाढ़ को दोपहर 1:15 बजे होगी। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं, बस थोड़ी देर विज्ञापन।
1: नेपाल टेलीकॉम को 4G।

0: नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
1: अब बाकी समाचार। परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल चीन के विदेश मंत्री वांग यी के निमंत्रण पर 4 दिवसीय चीन दौरे पर आगामी 31 जेठ को बीजिंग के लिए रवाना होंगे। परराष्ट्र मंत्रालय के अनुसार चीन दौरे के दौरान मंत्री खनाल अपने समकक्ष वांग यी के साथ नेपाल चीन संबंधों को और अधिक सुदृढ़ बनाने और आपसी सहयोग को मजबूत करने के विषय में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इसके अतिरिक्त वे चीन के उच्च अधिकारियों के साथ भी अलग अलग मुलाकात और वार्ता करेंगे। देश में विदेशी निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से बीजिंग स्थित नेपाली दूतावास द्वारा आयोजित निवेश सम्मेलन में मंत्री खनाल भाग लेंगे। साथ ही वे चीनी उद्यमियों और व्यवसायियों के साथ भी चर्चा करेंगे। मंत्री खनाल के आगामी 3 आषाढ़ को स्वदेश लौटने का कार्यक्रम है। कैलाली की गोदावरी में नदी के तेज बहाव की चपेट में आने से 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई है। जिला पुलिस कार्यालय के DSP योगेंद्र तिमिल सिन्हा के अनुसार महेश्वरी धमला और कल्पना साउद आज सुबह जंगल में मशरूम खोजने गई थीं। इसी दौरान वे नदी के तेज बहाव में बह गईं, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। दोनों महिलाएं गोदावरी नगरपालिका वार्ड नंबर 4 की निवासी थीं। ट्रेड यूनियन को खारिज करने के निर्णय के खिलाफ दायर याचिका पर सर्वोच्च अदालत ने अंतरिम आदेश को जारी रखने से इनकार कर दिया है। प्रधान न्यायाधीश डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा व न्यायाधीश डॉक्टर नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजीज मुसलमान और महेश शर्मा पोडेल की संवैधानिक पीठ ने इसी जेठ 20 गते से शुरू हुई सुनवाई आज समाप्त होने के बाद अदालत ने पहले जारी किए गए अंतरिम आदेश को जारी रखने से मना कर दिया। अदालत के इस आदेश के साथ ही ट्रेड यूनियन को खारिज करने के निर्णय को लागू करने के लिए सरकार के लिए रास्ता साफ हो गया है। शिक्षा तथा खेलकूद मंत्रालय ने अध्ययन वीजा सिफारिश प्रक्रिया में संदिग्ध दस्तावेज और फर्जी रसीदों के उपयोग की आशंका के बाद विस्तृत जांच पर कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए गृह मंत्रालय से आग्रह किया है। शिक्षा मंत्रालय ने गृह मंत्रालय को भेजे गए पत्र में कहा है कि विदेशी विद्यार्थियों के लिए जारी अध्ययन वीजा सिफारिश से संबंधित दस्तावेजों में गंभीर संदेह उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसकी जांच और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए। मंत्रालय ने यह भी बताया है कि उसके समक्ष प्रस्तुत कुछ दस्तावेज और रसीदें संदिग्ध और फर्जी प्रकृति की लग रही हैं। कानून, न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री सुविता गौतम ने मंत्रियों से सरकार की नई नीतियों से संबंधित कानूनों के मसौदे तैयार करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का आग्रह किया है। आज आगामी आर्थिक वर्ष में संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले विधेयकों की तैयारी के संबंध में संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री खटकराज पौडेल तथा कृषि, वन तथा वातावरण मंत्री गीता चौधरी के साथ चर्चा करते हुए मंत्री गौतम ने कहा कि नई सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट के बाद लागू की गई नीतियों के अनुरूप संबंधित मंत्रालयों को कानून निर्माण की तैयारी आगे बढ़ानी चाहिए। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत की राजधानी दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके के तुगलकाबाद एक्सटेंशन में शुक्रवार आज तड़के 5 मंजिला इमारत में आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली पुलिस के हवाले से BBC ने बताया है कि हादसे में मारे गए लोगों में 22 साल का एक लड़का और 2 महिलाएं शामिल हैं, जबकि 2 अन्य की हालत गंभीर बनी हुई है। आग लगने की इस घटना के बारे में तड़के 2:24 पर PCI कॉल की गई थी। पुलिस के मुताबिक आग लगने के बाद इमारत धुएं से भर गई, जिसमें फंसे 8 लोगों को निकालकर एम्स और सफदरजंग हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने अपने बयान में बताया है कि शुरुआती जांच से पता चला है कि आग ग्राउंड फ्लोर पर बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी। आग ने पास में पार्क किए गए एक 2-व्हीलर को अपने चपेट में ले लिया। इस हादसे को लेकर आगे की जांच जारी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकारी एवं सार्वजनिक भूमि जांच तथा संरक्षण संबंधी उच्च स्तरीय रावल आयोग की रिपोर्ट लागू करने का सरकार का निर्णय। काभरे पलांचुक के नमोबुद्ध में हुई बस दुर्घटना, 8 लोगों की मौत, 16 घायल। ट्रेड यूनियन समाप्त करने के सरकारी निर्णय के खिलाफ दायर याचिका में अंतरिम आदेश जारी रखने से सर्वोच्च अदालत का इनकार। परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल चीन दौरे पर जाएंगे परसों और भारत की राजधानी दिल्ली में 5 मंजिला इमारत में आग लगने से 3 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।
2: सादा खाना 100 रुपियाँ, मटन खाना 200 रुपियाँ। ओए, मोबाइलको डाटा पनि हामीले चलाएको मेनु अनुसार महँगो र सस्तो पर्नु पर्ने होइन र?
3: हुन्छ नि मित्र, फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, भाइबर, व्हाट्सएप जस्ता सामाजिक सञ्जालहरू मात्रै चलाउने हो भने नेपाल टेलिकममा असाध्यै सस्तो मूल्यमा सोसियल मिडिया डाटा प्याक पाइन्छ। डेली नै मजाले चलाउने
4: *1415# डायल गर्नुहोस्।
0: नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।
5: सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल,
6: राष्ट्रिय रेडियो, राष्ट्रको सञ्चार।